प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल वो फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है, नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है

कि नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नू सो, देही नू काड़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है, तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहिंदे ने इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है। कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है। सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाऊ च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकान दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना आज अर्ज करांगा उन्होंने लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्होंने आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल यू विल फाइंड ए ग्रेट डिफरेंस इन योर क्वालिटी ऑफ माइंड एंड यू विल अचीव स्टिलनेस ऑफ माइंड। अभ्यास की है, वाणी च इस तरह आख्या

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ अते फिर अपने अंदर जिस तरह सी बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनू देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हां नूं देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव के उन्हां नूं इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो, कोशिश करके करन दी देखो कल तो।

आख्या जे तू अकल लतीफ ता काले लिखना लेख कोई पाप ना कर कोई ऐसा उपद्रव ना कर तू मनुख तू देवता बनन लई इथे आया ऐसा ना होवे मनुख तू पशु बन के जावे जिस वाहिगुरु ने तैनू अमोलक श्वास बख्शे चंगे गुण धारण कर जे औगुण वेखने हन ता अपने अंदर जाती पा ते जे सिफत करनी है उस्तत करनी है ता अकाल पुरख वाहिगुरु दी कर आप नड़े गिरीवान में आख्या अपनी बुकल विच नीवा सिर पा के वेख विचार कर जो जिस माया दे लोभ ने तैनू पाप कर्म करन लई प्रेरणा दिती है ओ माया तेरी कितना कुछ सहायता करेगी ए रिश्ता आद पाप कर्म जो फल तू प्राप्त कर रहे हैं ए माया तेनू सुख नहीं देवेगी ए माया नरक बन जाएगी आप नड़े गिरीवान में जो कुछ तू कर रहे हैं जो कुछ हृदय रूप पट्टी ते लिख रहे हैं उनु वाच उनु वेख तू की कर रहे हैं इसलिए बाबा फरीद जी कह

बिरद अवस्था एक मनुख की बिरद अवस्था है। ते बाबा फरीद जी दे पास आके बेनती कीती, फकीर साईं मैनू मुक्ति दा उपदेश दियो कि मेरा संसार ते आउणा सफल हो जावे। ये गल सुन के उसनू समझाउण लई बाबा फरीद जी ने श्लोक उच्चारण कीता, फरीदा जा तू खट

मरण वर ले जासी परनाए। ओ भाई एक दिन ए पांच भूतक शरीर तैनू त्यागना ही पवेगा, ओथे तेरियां सियाणपां कम नहीं आउणी। एक गुरु का सिख जो सतगुर दे पाने विच अपना जीवन बतीत करदा सी, अज एक प्रेमी आया विचार वटांदरा होया ते गुरु के सिख ने आख्या, भाई गुरु नानक दी बाणी कहदी है कि जो होनी है ओ प्रबल है, जो अकाल पुरख ने लिख दिता है ओ होके ही रहिंदा है। मनुख दी सियाणप चतराई सियाणपां किते काम ना आई है, तुठा साहेब जो देवे सोई सुख पाई। जो अकाल पुरख वाहिगुरु ने लिखिया ओ हो के ही रहिंदा है। ता ए गुरु का लाल कहने लगा, महाराज जे पहला पता लग जावे ना ते मनुख अपना बचाओ कर सकता है, कोई वड़ी गल नहीं। मैं ए गल नहीं मनदा, मनुख नूं पता होवे मुसीबत आ रही है, कोई ना कोई अपने बचन दा उपराला कर लैंदा है। जदों इसने ना मनी तां गुरु का सिख कहन लगा, भाई आओ सामने ताली देख रहे हैं, अज तो सत दिन बाद तैनू उत्थे फांसी चाड़िया जाना, जा तू अपना बचा कर लै जे कर सकदा है तां। महाराज मैं पूरा जतन करांगा, मैं वेखना किवें कोई मैनू इत्थे सूली चढ़ दे। घोड़ा उसते कोल सी, ज्यों दौड़न लगा रात दिन एक करके, अपने वल्लों दूर तो दूर चला गया, पर कुदरत ने मौत ने उसनू घेर के उत्थे ही ले आउंदा जिथों तुरिया सी। सात संगत बोलो श्री वाहे। सवेर

जिस पुरुष ने जवानी विच कुछ नहीं किया, क्योंकि फरीद जी कहते हैं भाई बचपन खेडा विच बीत गया तो जवानी सिमरन विच बतीत कर लेंदा, क्योंकि जवानी विच देह अरोगता हुंदी है ते फिर बिरध अवस्था विच जदों मनुख पैर रखदा है तां फिर इस देही नूं रोग लग जांदे हन ते रोग काल दी निशानी है। इसलिए फरीद जी कहंदे न काली जिनी ना रावया, जिन्हां ने जवानी विच नहीं जपया उन्हां नूं भाई बिरध अवस्था विच भी चेता नहीं आउंदा, भाव ओ नहीं जप सकदे।

सेवा लैन कोई संगत नवी आई हुंदी है केवल बोल के चारे विशेषताइयां लंघदे आ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पहली विशेषताई धरती ते जिन्ने अवतार आए

पंचमी विशेषता ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल तुसी सत्संग जी गल्लां भी कर सकते, कई हैरान हो जाएंगे।

अब मैं तो तीसरे गस्त में भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।

अतरा गरुड़ो मेरो रामैया रुड़ो कहंदे ने सोना ऐ परमेश्वर तेरा नाम बड़ा सोना है रूप रुड़ो तेरा रूप बड़ा सोना है अतरंग रूड़ो बहुत ही सोना ते प्यारा

प्यास लगी पानी दी पाल कीती एक खूह नजर आया उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन क्योंकि पानी बहुत नीवा सी खूह दे विचों ओ पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल पानी देखिया बहुत डूंगा है बहुत नीवा है पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंची हुए महापुरुष सन अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे पानी पीता पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए चेलिया नू प्याया कुछ लोकां नू भी प्याया ते नामदेव नू कहा नामदेव तू भी पानी पी लै। नामदेव जी कहन लगे मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है तू भी भगत है तेरे विच भी शक्ति है तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू मैं पानी तां पीना है जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे नहीं तां मैं पानी नहीं पीना क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे कोल

मारवाड़ जिस तरह मारवाड़ देश विच नीर कहिंदे ने पानी पानी दे नाल लोक प्रीत करदे ने बेल बालहा कर हला और जिस तरह

तीनों के इंद्र बरसात जिस तरह धरती बरसात नाल प्यार करती है, बरसात पवे ता धरती खिल उठदी है। कुसम फुल नु के है बास खुशबू जिस तरह फुल दे नाल पवे।

जिथे अंब लगा हुए कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी है। इस तरह मेरे रमैया जिवें धरती पानी नाल प्यार करदी है, बरसात नाल पवरा फुल दे नाल कोकल अंब

मानसरोवर हंसला हंस जिहड़े ने मानसरोवर नाल प्रीत करदे ने मानसरोवर ते रहिंदे ने। भगत नामदेव जी बयान करदे ने चकवी को जैसे सूर बाल है, चकवी जिस तरह सूर दे नाल अपने

तरनी के औरत नु कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी है, इसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

खीर बाल हा जिवें बच्चा खीर के दुध नू दुध दे नाल प्रीत करदा है चातृक मुख जैसे जल तरा।

वाला ऐ परमेश्वर, हर जगह हर थां जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मन विच भी ऐ परमेश्वर तू है गए। ऐ नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार करदा है जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होने।

भगत कबीर बनारस रहा करते सन। किसी ने पूछिया कबीर तेरा गुरु कौन है। कबीर साहब कहन लगे गुरु मैं ता किसी नु गुरु तारिया नहीं ता उस के जिदा गुरु नहीं ओदी गति नहीं हुंदी। कबीर तू गुरु जरूर धारण कर। कबीर साहब कहन लगे फिर गुरु किड़ा है ऐस वेले जेड़ा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होवे उसनु मैं गुरु धारण करा। ता दसन वाले ने कहा कबीर स्वामी रामानंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं ओ गुरु तारण दे लायक ने तू उन्हां कोल चलिया जा। पर एक गल है स्वामी रामानंद ऊंची जात दे ने तू है जुलाया नीवी जात दा। स्वामी जी दे चेलिया ने तेनू स्वामी दे लागे नहीं लगन देना। पर एक तरीका है स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने। जे तेनू गुरु दी लोड़ है अमृत वेले उठ जेड़ियां पौड़ियां गंगा दियां स्वामी जी उतरदे ने उन्हां पौड़ियां ते जाके लम्मा पै जा जे तेनू गुरु दी लोड़ है। ए सुन के कबीर साहब कहन लगे ठीक है क्योंकि गुरु दी लोड़ सी। कहन लगे मैं अमृत वेले उस रस्ते ते जाके लम्मा पै जावांगा जिस रस्ते तो स्वामी रामानंद रोज सवेरे अमृत वेले गंगा इशनान करन जांदे ने। रात पई पर कबीर साहब नू नींदर नहीं आ रही क्योंकि गुरु दी लोड़ है ते जिनू गुरु दी लोड़ होवे उनू दुनिया भुल जांदी है। दो ही गल्ला ने या दुनिया खुश कर लीए या गुरु नू खुश कर ली। जे ता गुरु नू खुश करना है ते फिर दुनिया दा त्याग करना पवेगा। दुनिया दा त्याग घर बार छड़ के नहीं घर बार तिया पुत्रा माया विच रहंदिया होया परमेश्वर नू याद करना माया विच रहंदे होया माया दे उत्ते काबू पा के रखना मोह माया तो उत्ते उठ के रहना ए दुनिया दा त्याग हुंदा है। दुनिया छड़ के जंगलां विच जाना कोई त्याग नहीं। कबीर साहब कहन लगे मैनू गुरु दी लोड़ है। आप अधी रात हुई घरों उठे ते गंगा

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावण ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करन वास्ते

बड़ी मस्ती विच राम राम करदे तुरे आ रहे ने। गंगा दिया पौड़िया उतरन लगे, देखिया पौड़िया दे विचकार कोई सुता होया। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाए कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू, ते नाले के उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे नहीं।

ऐसा सुर हो गया स्वामी रमन दे पैर लगा के एक कहन दा के उठ राम के राम को पाए गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद के आश्रम वाल तुर पाए। स्वामी रामानंद जब इशनान करके जाते सन दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नू इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके कपड़े भी पवाए सिर ते ताज भी रखे आ मुकट कलगी भी रखी पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकता क्योंकि हार छोटा ए चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकता किवें करा ता कबीर साहब बाहर बैठे सन उन्ना जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने ते कबीर साहब ने बाहरों कहा स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ मार दियो। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए उठ के बुआ खोलिया बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं तू ते मेरे नालों भी अगे चला गया है तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान लई है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है कत जाइए रे कर लागो रंग ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

तीसरे भगत भगत तन्ना जिन्हां बारे भाई गुरुदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करदे ने।

चौकी ते रखे है, रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की, लस्सी रोटियां ठाकुर दे अगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ गए। ठाकुर नो

तीसरा दिन चढ़िया ते तन्ना कहन लगा हों भी मुंह ना जुटाल सा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडता दे हथों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना तू मेरे नाल नर

परमेश्वर नू रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तां असीं खा ली

0: तातन्ने ने हाथ जोड़ ले। कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए, लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप,
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला।

मैं इस वास्ते तेरी आरती करना क्योंकि सुने है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज स्वार्थ जड़ा भी इंसान तेरी

नौ पैस मांगो लावेरी, गौ भी चाहिदी ते मझ भी चाहिदी, पर हुण लावेरियां लावेरियां कहंदे ने दुध देण वाली। मझ भी चाहिदी गां भी चाहिदी, पर ओ जिहड़ियां दुध देंदियां होण

आज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी भी हो जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ हिरदे ते विसाओ।

पिताजी, मेरे नंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा, पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना कहो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहा है, सड़ जावण ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण ता रो रो के अखां दा पानी भी सुख गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार च, गुरु नानक दे प्यार च। लोकी कहंदे राय नू की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नू मुखातब होके कहंदा की

अरदास सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, करदी पास ते दही रिड़काउंदी ए, दही रिड़के सोहना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखिया, बेबे नूं फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहिंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनूं कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहिंदी सां वीर मैं अखां पहले खोलदी आं कि तूं पहले मक्खन मूंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खण चुक के मूंह च पा लैंदा। अज वी ओही भैण वीर आए मक्खण तू खा, मक्खण तू खा। तली उत्ते मक्खण पिया है, बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड्या पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सतीह पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने कीर्तन की समाप्ति कर दी। बाबा क्यों? हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सतेह पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लेंदे हो मेरे सतेह पातशाह? हजूर कहन लगे हां मरदाने तारा भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फायदा बन गईयां ना पुराने आरती तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है। ए जेड़ा कीर्तन हुंदा है ना ए भी तार नाल हुंदा है, तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है। पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नूं उपदेश देंदे ने, किसे गुरमुख ने लिखिया है कि तार विनदी चीजां परोंदी है, तार विनदी चीजां परोंदी है, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी। पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विन भी चित चुराई जाती, ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी। मरदाने नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी 12 सालां तों विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तों, नेत्र बंद कीते खोल दे जो खोले की किया मरदाने ने के मेरा धन गुरु नानक नानके आने दियां गलियां च पिया जांदा है आखो सही वाली। पर मरदाना काला है, 12 सालां तों बाद घर आया है, एना कलम काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा? तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तरंडी आया ते हजूर ने मरदाने नु क्या मरदाने ए पढ़ की।

विषमाद नाद विषमाद वेद विषमाद जीव समाद भेद विषमाद रूप समाद रंग विषमाद रागे फिरे जन विषमाद पौन विषमाद पानी विषमाद अग्नि खेर डैबडाणी विषमाद धरती विषमाद खाणी विषमाद साध लगे प्राणी विषमाद संजोग विषमाद वजोग विषमाद

राग गौड़ी मालवा विच ऋषभ धैवत कोमल ते मध्यम तीबर लगदा है। इस राग दे आरोह विच निषाद अते अवरोह विच धैवत वर्जित हन। इस राग दी जाति शाड़व शाड़व वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा दिन दा चौथा पैर है। इस राग विच हर नाम लेहो मीता लेहो शब्द दा गायन कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह।

और इन्हां ने हिंदुस्तान दे लोकां ते बड़े जुलम भी कीते और हिंदुस्तान दे लोग एक गुलाम सन मुगलां दे, दूसरा जातां पातां विच ऊंच नीच विच वंडे हुए सन। इस करके इन्हां दे विच एका नहीं सी, ब्राह्मणा दा बहना उठना वखरा, शूद्रा दा बहना उठना वखरा। जिस वक्त औरंगजेब दा राज हिंदुस्तान ते होया ता इसने

वो है इस्लाम धर्म। औरंगजेब ने हिंदुओं नु जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू किया, मंदिर तोड़ने शुरू किए। उस वेले कश्मीर के ब्राह्मण श्री आनंदपुर साहब पहुंचे। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार में इन्होंने बेनती की, महाराज हिंदू धर्म खतरे में है,

ते खालसे दा मतलब है खालस, जिदे विच कोई ऊंच नीच नहीं, परम नहीं, वहम नहीं, पखंड नहीं। ए खालसा नाम दिता, पर नाल कुछ गल्लां भी कहीं। खालसा कौन है? खालसे विच की खासियत होनी चाहिए है? जे ए खालसे विच सारियां गल्लां ने, ताहों खालसा है। ते ओ गल्लां गुरु साहिब जी

निकल के बची और हरि सिंह नलुआ दा जिथे तंबू लगा उथे जा पहुंची। अगे बहरे ते दो सिंह खड़े ने त्यार बर त्यार, उन्होंने बाणों नू देखिया

अगर मेरा कोई पुत्र होवे तो बिल्कुल हरी सिंह नलवे वर्गा होवे। सिंह साहब ने फिर कहा, बानो शकलां विच की है, पुत्र किसी भी धर्म का होवे, किसी भी मजहब का, उसकी कहो जी भी शकल होवे, नेक होना चाहिए। बानो कहन लगी, नहीं तुहाडे वर्गा पुत्र चाहिए, तुसी मेरे नाल निकाह करा लो, व्याह करा लो। उस वेले हरी सिंह जी उठ के खड़े हो गए, गुस्से नाल अखां लाल हो गई, कहन लगे, बानो जा, चली जा, तू मैनू डेगण आई है, साडे गुरु दा हुक्म है, एका नारी जति होए पर नारी ती भैण वखाण। जद ए गल कही, बानो वापस मुड़ी, पर वापस मुड़दी ने एक ताना मारे, कहन लगी, हरी सिंह मैं सुनया कि गुरु दे घरों कोई खाली कदी नहीं मुड़िया, ये भी सुनया कि सिख दे घरों भी कदी कोई खाली नहीं मुड़िया, अज ये गल झूठ हो गई है, मैं सिख दे घरों खाली मुड़ चली। ताना मारे है। हरी सिंह कहन लगी, बानो ठहर जा, गुरु दा घर उथों ते कदी कोई खाली नहीं गया, गुरु दा जिहड़ा सिख है उहदे घरों भी कदी कोई खाली नहीं गया। पहरेदार सिंह नूं आवाज मारी, पहरेदार अंदर आया, हरी सिंह जी कहन लगे, जा सिखा, दूसरे तंबू विचों